एक सहकारी प्रेमी तख कोष्ट बैठे, हाथ उज माला फड़ी रह राज दा पाठ पिया कर दे। इस दा लड़का बारों पटकदा पटकदा आया, अपने पिता नू पाठ करदा देखे आता कोल बैठ गए। पिता ने पाठ किया, पुत्र ने सुने, अरदास कीती, पुत्र ने वो भी सुनी। अरदास तो बाद ए लड़का पूछदा है, पिता जी ए जो तुसी पढ़ रहे से मैनू सुन के बड़ा आनंद आया, पर ए किस दी कलाम तुसी पढ़ दे सी? इस तरह लगदा है जिवें पहला कदी इस लड़के ने पाठ नहीं सुनिया। वैष्णव साधुआं दे कोल ए बहुता जाया करदा सी। पिता कहन लगा, बेटा ए कलाम नहीं, ए धन गुरु नानक साहब दी बाणी। ए सुन के लड़का कहन लगा, पिता जी मैं ते एवें बाहर भटकदा रहा, मन नूं शांति नहीं मिली, अज ए बाणी सुनी मन टिक गया। जिस गुरु दी बाणी विच इन्ना आनंद है, जे कदी उस गुरु दे दर्शन हो जान ता पता नहीं किन्ना क आनंद प्राप्त होवेगा। पिता जी ओ गुरु किथे? मेरा चित करदा है कि मैं उस गुरु दे दर्शन करा। पिता खुश होया कि मेरे पुत्र दा ध्यान गुरु वाल आया। कहन लगे, बेटा धन गुरु नानक साहब ता ऐस वक्त नहीं हैगे, हैगे ता हर वेले ने, हर जगह ने, पर संसारी तौर ते ऐस वक्त उन्हां दा पांच भूतक शरीर इस मातलोक विच नहीं। ए सुन के लड़का कुछ उदास होया, कहन लगा, पिता जी मैं फिर अभागा रह गया, मैं गुरु दे दर्शन नहीं कर सकता। पिता ने कहा, नहीं बेटा, गुरु दा सिख कदी अभागा नहीं होया। गुरु नानक साहब दी जगह उन्हां दी दसवीं जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंजाब दे विच आनंदपुर साहब जोतां जगा रहे ने। जे तू दर्शन करने ने ता धर्मशाला विच संग इकट्ठा हो रहा है। जिन्हां ने परसों आनंदपुर साहब जाना है तू भी नाल चलिया जाई। सफर लम्मा होवे नाल संग होवे ता गल्लां बातां करदे आ सफर मालूम नहीं हुंदा, तू संगत दे नाल चला जा। होर खुशी कि संग भी इन्हां दिनां विच जा रहे है, जान दी तैयारी कीती। पिता बड़ा खुश है कि मेरा पुत्र अज गुरु दे दर्शन करन आनंदपुर साहब जा रहे है। तैयारी हो गई, 100 रुपया पिता ने दिता कि बेटा मेरे वालों गुरु दे चरणा ते रख के मथा टेकी, आखी पातशाह हथां दी मैल है, इस नूं सफला करो। 500 रुपया इस लड़के ने अपने वालों भेटा धरन वास्ते जेब च पा लिया। समान लिया, धर्मशाला जा पहुंचिया, संगत सारी जुड़ी है। जान तो पहला सारी संगत ने अरदास की,
ਸਾਰਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ

गुरु का जब सरवण करते ये सारे लोग आनंदपुर साहब नु तुरे जा रहे ने। ये सहजधारी लड़का मन विच सोचता जांदा मना जिस गुरु की बाणी विच इन्ना आनंद है उस गुरु दे ते दर्शन कीते आ मन नु ठंड पै जाएगी। गुरु साहब ते चौंकड़ा मार के बैठे होणगे उन्हां दी अखां बंद होणगीआं गुरु साहब की समाधि लगी होवेगी। मैं जाके बुलावांगा तावी उन्हां दी समाधि नहीं खुलनी उन्हां दा दरबार बड़ा वड्डा होवेगा बड़ी संगत बैठी होवेगी बड़ी शोभा होवेगी क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे बड़ी संगत बैठी होवेगी बड़ी शोभा होवेगी क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे और उसे तरह ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे सोचदा संगत दे नाल तुरिया जा रहा है।

दूसरे पास से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शिकार खेड़ के आए सन। नाल सिखा ने किन्ने ही मग मार मार के उन्हां दियां लत्तां फड़ियां ने ते टौणा लटकियां ने। ओ मग हथां विच फड़ी होई ने। संगत ने गुरु साहब नूं देखिया, गुरु साहब ने संगत नूं। गुरु साहब जी भी खड़े हो गए, संगत भी किले दे बाहर ही खड़ी हो गई। सारी संगत ने मत्था टेकिया, पर ए जिहड़ा सहजतारी प्रेमी सी एदे मन विच गुरु साहिबां वास्ते किरणा पैदा हो गई। ए तां सोच के आया सी कि गुरु दी समाधि लगी होवेगी, गुरु साहिब चौंकड़ी मार के बैठे होणगे, पर जदू देखिया कि गुरु साहिब जी तां शिकार खेड के आए ने, नाल सिखां ने मरे होए मग फड़े ने हथां दे विच, तां इहदा मन किरणा दे नाल भर गया।

0: जारो मगु लंघाए।
1: जिन्हां दे सिखां ने कोस हजारो बहुत सारे मग मार के ते पुठे लटकाए हो।

सारी संगत वाल देखी है। सारी संगत वाल देखण तो बाद ए जिड़ा लड़का सी सहजधारी इस उत्ते निगाह टिका दी। इसने भी देखिया कि गुरु साहब जी मेरे वाल देख रहे, समझ गया कि मेरे मन की भावना गुरु साहबां ने जान ली। जो मैं मन विच सोच रहा कि गुरु के मन विच दया नहीं, ये जीवां नूं मारदे ने, गुरु साहबां ने जान लिया।

उस कर्मा दी खेड दा सदका ही जीव जेड़े ने जुड़ना विच भटकदे ने ते गुरु कृपा करके उन्हां दा जन्म मरण दा गेड़ जिहड़ा है ओ कट दिंदा है। सारी संगत किले विच दाखल होई, साहब जी भी जा पहुंचे, शाम दा दीवान सजिया, लंगर छकिया, एदे नाल दे साथी तां सौं गए पर इहनूं नींदर नहीं आ रही। कहन लगा मना गुरु दा तेज प्रताप भी बड़ा, गुरु दा दरबार भी सोहना है, संगत भी बड़ी है, दर्शन कीते आ मन नूं ठंड पैंदी, पर इको गल माड़ी है जेड़ा गुरु जीवां नूं मारदा है। हुण सोचण लगा गुरु नूं 600 रुपया भेटा धरा कि ना धरा। ऐसे सोच विचार विच अमृत वेला हो गया, संगत उठी, ए भी उठे, इशनान पानी कीता, गुरु साहिबां दे दरबार वाल संगत दे नाल तुर पे। अमृत वेले दा नजारा, कोई झाड़ू पिया फिरदा, कोई पानी तरौंकदा, कोई लंगर विच सेवा कर रहा है, कोई बाणी पढ़दा, कुछ कीर्तन सुनन जा रहे ने, मन बड़ा खुश होया। ए भी जा बैठा संगत विच, आसा दीवार दा कीर्तन होया, गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश होया, कलगीधर पातशाह भी आए। आखीर दे विच रागी सिंघा ने शब्द पढ़िया, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुख उजल।

0: बल्कि जल पानी नाल सेवा करनी चाहिदी है।
1: जे पर तीत गुरुवाक पर ता तू ले कर जाए।
0: जे तेनु गुरु दे बचन ते भरोसा है इनू वेचना इनू कर ले जा।

फिर आया पिता को, पिताजी मैनू गुरुकुल बख्शवा दियो। पिता इन्हां दी माता ते ए लड़का चमकौर सौ पहुंची, ध्यान सिंह नू नाल लैके के तू गुरुकुल सानू बख्शवा दे, आनंदपुर साहब जा पहुंचे। तीन दिन सेवा कीती, चौथे दिन इस लड़के दा पिता गुरु साहिबां दे कोल पहुंचिया, बेनती कीती कि खिमा करो मेरा लड़का भुल गया, उन्हें आपदा बचन वेचिया। साहब जी कहन लगे बिशंबरदास घबरा ना, तेरा ते साडा बड़ा पुराना संबंध है, गुरु नानक साहब उजैन गए सन ता तुहाडे वड़के नानू ने कहा सी फिर कदू दर्शन दियोगे, ता गुरु नानक साहब ने कहा सी दसवें जामे विच मिलांगे, तो दसवें जामे विच असी आए हां, तुहाडा साडा मेल होना सी होया है, कल दीवान तो बाद आयो जो मंगोगे तुहानू मिलेगा। अगले दिन सारे जने इकट्ठे होए, साहब जी कहन लगे ध्यान सिंह तू गुरु दा बचन ले, तेनू कुछ मिले है? ध्यान सिंह ने हाथ जोड़ ले, कहन लगा पातशाह जो मेनू मिले है मैं दस नहीं सकता, गुरु अर्जन साहब दा शब्द है पढ़ के सुनाना, इन्ना कुछ मेनू मिल गया है। ता शब्द पढ़िया गुरु के बचन मोहि परम गत पाई, ए शब्द आप सुन चुके हो कि गुरु दे बचन द्वारा की प्राप्त होंदा है, माया भी मिली हलवान गया, मोरां दा भांडा लभा, जमीन भी लै ली मकान भी बना ले, सब कुछ मिल गया। ते जदों इस लड़के हरगोपाल दास ने सुनिया कि गुरु दे बचन विच ता बहुत कुछ है, ता रोण लग पिया। ता गुरु साहब ने कहा भाई रोवो ना, घर जाओगे, घर जाके बस्तर छाद के पांच सिखां नू घर बुला के प्रसाद छकायो, कड़ा प्रसादी देख तैयार करियो, आनंद साहब का पाठ करियो, जो मंगोगे उस वक्त अरदास विच ओ तुहानू प्राप्त होवेगा। गुरु की वड्याई कर दे, वापस उजैन पहुंचे, जो मंगया वो गुरु ने फिर बख्शिश कीता, सारे दुख दूर हो गए, सुख जड़े सन उन्हां नाल फिर घर भर गया। ते गुरु साहब दा शब्द है भाई गुरु दा वचन की है, जो आपा गुरु दी बाणी पढ़दे गुरु दे वचन नूं मन्नांगे, गुरु दे वचन दी कमाई करांगे, तां साडा जीवन सुखां दे नाल भर जावेगा। जे गुरु दे बचन दी सार नहीं लवांगे ते फिर भाई दुखी होवांगे।

तो ठंडा लोड़ है जिन्ना को गर्म लोड़ है उस रूप विच खुराक आनी ये कौन है अंदर ओनू खोज उस कुदरत नू खोज भी वेखो तुसी भी घ्यो ना होवे दुध ना होवे गुजारा हो सकता है ते ए चीजां रब ने थोड़ियां दित्तियां महंगी है पानी बिना गुजारा नहीं ते खुला बख्शिया हक सतनाम हवा बिना ही गुजारा नहीं ते बिल्कुल मुफ्त बख्शी हर चीज तोल के सुट्टी धरती ते उन्हें

ये अरदास करो। एक बड़ी कीमती वचन वो समा हो गया, हम सुना के समाप्ति। सियालकोट च गए बाबा नानक, ते मरदाने नू दो पैसे दिते सी, जा पैसे दा सच ते पैसे दा झूठ खरीद के लिया। वो जिथे जावे अगला मजाक कर छड़े, जिथे जावे अगला मजाक कर छड़े। भाई मूला कहिंदे दुकानदार सी, जिदा नां सुणदे ना भाई मूला, मूला खत्री, खत्री दुकानदार हुंदे। इहदे चोल चला गया मरदाना, भी पैसे दा झूठ चाहिदा पैसे दा सच। उन्हें दो पैसे रख ले, कागज ते लिख दिता, जीना झूठ ते मरना सच। आखो सतनाम, जीना झूठ ते मरना सच। पुछया कौन है तेरा मुर्शिद गुरु नानक, कहंदे मरदाना भी वह कागज लै, मगर मगर भाई मूला भी दर्शन करन आ गया। कहंदे भाई मूले नूं इतिहास लिखिया, गुरु नानक साहब की बख्शिश प्राप्त होई, रंग लग गया। ध्यान देना, किन्ने दिन गुरु नानक महाराज दे नाल रहा। अखीर गुरु नानक ने आखिया मूलिया, चल जा, मैं गोरख नहीं कि कन्ना च मुंदरां पवा के तेनूं नाल तोर लवां, दुकानदारी कर। आ सब ध्यान रखी, हुण संगत ध्यान देना, भले बंदे दी संगत दी किन्नी लोड़ है। सारे सियालकोट विच कोई पैसे दा झूठ ते पैसे दा सच ना दे सकिया। इन्नी को दी सोझी हैगी सी, इन्नी क अवस्था सी कि इस चीज नूं समझ चुका सी वी जीवना झूठ है मरना सच है। लेकिन पढ़ो इतिहास, गुरु नानक साहब की कुछ दिन की संगत तो बाद जो महाराज ने कहा दुकानदारी कर, सारा सच ते पैरा दई, अमृत वेला संभाली तोरिया। पढ़ो साखी, चंद दिन बाद भाई मूले नू फिर माड़े बंदियां दा संग हो गया। आखो सतनाम, कहंदे बुद्धि जड़ी ना इना बच के रहना जरूरी, मूला इना नेड़े। कहंदे उहदी बुद्धि इत्थों तक हो गई गुरु प्यारिओ, सिर्फ संग माड़े करके इत्थों तक बुद्धि हो गई। कि कुछ समय बाद कहंदे गुरु नानक साहब फेर आए, मरदाने नूं कहंदे जा मूले नूं बुला के लिया। भाई मूले ने दूरों वेख लिया मरदाना आ रहा, ते अपनी वोटी नूं अंदर जाके कहंदा, कहंदा फेर ना मैनूं कोई दिनां लई लै जाण, अगे मेरे बड़े दिन इना खराब कीते ने, ते मैं उत्ते लुकना वा, तू कह दे घर नहीं है। आखो सतनाम, एडा वेख लो किथे की, किथे समझ चुका जीवना झूठ, असीं जीवना सच गिणने, किथे कुंडी खुल गई है। जीवना झूठ है मरना सच है। कितने कुछ संग हो गया ते मैं फिर नहीं जाना चाहता। हुण जो लीला अगो वरती तुसी साखियां सुनदे हो, वोटी ने कहता घर नहीं, मरदाने ने आके कहता घर नहीं। हुण सतगुरु ते जान ही जान, सहज सुभा बचन निकलिया, जे घर नहीं ते है ही नहीं। आखो इधर बचन उधर काल नूं हुकम, सप ने डंग मारिया। मूले दी जदों पत्नी भजी आई, साखी बड़ी लंबी, केवल इशारा। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच पंक्तियां दर्ज ने, उस वेले जड़ियां उचारियां जदों उन्हें मैदाने ने कहा घर नहीं, जड़ियां पंक्तियां उचारियां, नाल किराड़े नाल किराणा दोस्ती, भैड़े बंदे नाल इहदी दोस्ती हो गई मरदाने आ। नाल किराणा दोस्ती, कूड़े कूड़ी पाए, मरना ना जापे मूलिया आवे किते हाए। एक संग नू महाराज ने इस पहली पंक्ति च लिखिया, नाल किराणा दोस्ती, ओह मूला जिहड़ा भज्जा आवे। इना प्यार जिन्हू इत्थों तक पहुंच हो गई कि जीवन नू झूठ गिण लिया मरण नू सच, बड़ी वस्ता होती। ओ मरदाने, इनू दुकान दे उत्ते संग गलत हो गया। दोस्ती नाल किराणा दोस्ती, किराणा माड़े मोटे कूड़े कूड़ी, हर वेले गल कूड़ दी।

अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महा

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं हुलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाव नूं अपने

संत बन गए। जिन्हें इस कहानी नूं समझिया नहीं, बेशक उन्हां भगती कीती, सिमरन कीता, पर किसे मंजिल ते पहुंच न सके। इसे वास्ते देखते हैं

मंदल बाजे, मंदल क्या है टोल नु। एक टोल बजद जदो मड़िया हुंदा है, जदो बदल गरजदे ने सावण दे महीने बरसात पैंदी, पर जद परमेश्वर दा मेल होवे गुरु मेल करावे ते फिर अनमड़िया मंदल बाजे, बिना मड़िया होया ढोल वजन लग पैंदा। बिन सावण घनहर गाजे, बिना सावण दे बदल गजन लग पैंदा। बादल बिन बरखा होई, बिना बदल दे बरसात होण लग पैंदी है। बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई, ए गल हसण वाली ने विचार दी है। जद परमेश्वर दा नाम अंदर वस जावेगा, परमेश्वर दे नाम दा ढोल वजेगा, ते फिर जिहड़े विकार ने ए अंदरों भज जाणे। ढोल वजे ता छोटे मोटे खड़ाक सुनाई नहीं देंदे, परमेश्वर दे नाम दा ढोल अंदर वजेगा ते विकार दुबदा ईरखा ए भज जाएगी। बिन सावण कन हर गाजे, परमेश्वर दा नाम वसेगा ते अंदर बरसात होवेगी, केड़ी नाम दी बरसात। बादल बिन बरखा होई नाम दी बरसात वास्ते बदलां दी लोड़ नहीं पैंदी। जो तत बिचारे कोई, भगत नामदेव जी कह रहे ने, अगर इस दी विचार

कि जिन्हां ने अपने गुरु दे नाल प्रीत लाई, गुरु ने नाम दे के परमेश्वर नाल मिला दिता, ओ फिर परमेश्वर दा रूप हो गया। उसने इस कहानी नूं जान लिया कि संसार परमेश्वर दा रूप है, ते जिन्हां ने इस गल नूं जाणिया ओ फिर परमेश्वर

कृपा की थी। ज्ञान अंजन, अंजन कहंदे ने सुरमा, गुरु ने ज्ञान का ऐसा सुरमा दिता कि मैनु इस गल की सोझी

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश

पानी टिक्या रहेगा, जे पानी नो धरती से डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह सहब जी फरमाते हैं, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं।

सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती, भावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना, और पैसे तू झगड़ा हो गए और झगड़ा होंदा भी। अक्सर देखते हैं देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं, इस वास्ते नहीं कि उन्होंने को सेवा दा चाह, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है, नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे, ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा, पानी विच रह के पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिर

जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवी, तेरी भी मौत होगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उस जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तैनू गोते दे दे के मारांगा और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गए और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया दोनों की मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं। राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे। गजपत पार उतारे अनेक शब्दों विच इस साखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक परा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नू ठंडा पानी मिले। और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नू अपने वल खिंचना शुरू किया। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा। ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया पर फिर तंदुए का जोर चलिया ते हाथी

अगर हाथी दा योर चले ओ तंदुए नु खिच के किनारे तक ले आवे, तंदुए दा योर चलदा है ओ हाथी नु खिच के डूंगे पानी विच ले जांदा है। हाथी दे नाल दे इहदे जिहड़े साथी सन ओ टाहणियां तोड़ तोड़ के पानी विच सुटदे ने। कुछ इस हाथी दे काबू आंदियां ने, कुछ टाहणियां पानी विच रुढ़ जांदियां। साहब जी बाणी विच फरमांदे हन, जानवर दी गल नहीं इंसान दा भी इहो हाल है। सुख में बहुत संगी भए, दुख में संग ना कोई। सुख होवे ते हर कोई मित्र बनन दी कोशिश करदा है, दुख लगे ते सके भी साथ छड़ जांदे। हाथी दे नाल भी इहो वापरिया, हौली हौली इहदे साथी साथ छड़ के चले गए, हाथी इकला रह गया। हुण खुराक धरती ते है हाथी दी, पर हाथी है पानी विच। खुराक नहीं मिलती, कमजोर हुंदा गया, तंदुआ पानी विच है, उहदी खुराक पानी विच, उह अपनी पूरी ताकत विच है। आखिर तंदुए दा योर चलिया हाथी नूं खिच के पानी दे इतनी डूंघाई तक लै गया कि हाथी सारा डुब गया, पर इहदी सुंड बाकी रह गई। कुदरती कोई कवल दा फुल पानी ते रुड़े आ रहा सी, हाथी ने सुंड दे नाल ओ फुल फड़ के आकाश वल कीता। मानो अरदास पिया करदा है, ऐ परमेश्वर माया दे लालच विच असां दोनों भरावां ने कितना दुख पाया, माया नूं मुख रख लिया, तेरे नाम नूं पिछे छड़ दिता, पर इस वेले तेरे तो सिवा मैनूं कोई नहीं बचा सकता। ऐ परमेश्वर मेरी रखिया कर। हाथी ने पुकार कीती तां उसे वेले विष्णु भगवान नंगे पैर गंडका नदी दे किनारे पहुंचे, अपना सुदर्शन चक्र पानी विच छड़ के तंदुए दियां तारां कटियां और हाथी दी बंद खलास कीती। गुरबाणी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच धन गुरु रामदास जी महाराज आप बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो। जिस तरह कुंचर हाथी नूं कहा, हाथी नूं तंदुए ने पानी विच डोबण दी कोशिश कीती, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो घर उपर कढ निस्तारे। हाथी ने सिमरन कीता ते परमेश्वर किस तरह अपने प्यारियां दियां अरदासां सुनदा है। परमेश्वर भगतां दी रखिया वास्ते अपने दूतां नूं अपने प्यारियां नूं भेजदा। विष्णु भगवान ने आप नदी किनारे पहुंच के तंदुए दियां तारां कटियां और हाथी दी बंद खलास कीती। ए हाथी पानी विच बाहर निकलिया, नदी दे किनारे आया ते की देखदा, सामने विष्णु भगवान खड़े हन। बेशक जोन हाथी दी है पर सोझी है, हाथी नूं सारी सोझी है, फिर भगवान सामने खड़ा है ते जीवन दी सोझी क्यों ना होवे। अगलियां दोनों लता निवा के हाथी ने नमस्कार कीती और मानो पुकार पिया करदा है, भगवान कृपा कर इस जून दे विचों साडा छुटकारा कर, बड़ा दुख

विष्णु भगवान ने इन्हां दे बंधन कटे, तंदुए नूं भी मुक्त किया, इस हाथी नूं भी मुक्त किया, ते दोनों भरा भोता ते ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भगती करते सन पर माया का लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते इन्हां नूं इतना दुख भोगना पिया। और जब भगवान मिलिया तो फिर मुक्ति नूं प्राप्त होया। इसे शब्द दे विच धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हां दोनों भरावां दा जिक्र करते ने कि माया पिछे सराफ दे के दोनों ने जोड़ना पाईया, दुख भोगया पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हां दा पार उतारा कीता। इस शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ये कथा कहानियां तेनू दस रही है, इन्हां तू सिख्या लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहिब जी फरमांदे ने, पापां बाजों होवे नाही मोया साथ ना जाई। पापां तो बगैर माया बहुती कट्टी नहीं होंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जांदा। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाण, मन विच प्यार रख, जिन्नी भज नठ माया वास्ते करदा है, अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, उदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा, ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनू परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक वारी तू भी कह उठेगा, है भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं भी परमेश्वर दी कहानी नूं जान लिया कि ये संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है।

प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं बख्शिश कर रहे हैं असी अपने रोजाना दे रह रास्ते पाठ दे विच ये शब्द ते पढ़ते हैं पर जो इस दे विच विचार पेश किया गया है उस ते असी कदे रुकते नहीं हैं इस करके असी ना रुकन करके जो इस पंक्ति दे विच साड़ी एक दर्दनाक हालत का जिक्र किया गया है उसनों से अवॉइड कर जाने आप जानते हो कि अगर कोई चीज गल जाए अगर कोई चीज गल जाए तो उस दे विच नंबर एक ते कीड़े मकौड़े पैदा हो जाते हैं वो बीमारियां का घर बन जाती और दूसरा उस दे विचों दुर्गंधी आती है उस दे नजदीक होना भी मुश्किल हो जाता है गली हुई चीज और गलियां हुई चीजा असी बाहर फेंक देने बाहर सुट देने और असी कभी यह सोचा है अपने मुतलक कि असी भी गल गए हैं ऐसा असी नहीं सोचा अगर असी ऐसा सोचिए कि असी अगर साडे शरीर का कोई अंग गल जाए तो असी डॉक्टर के पास जाने उस उत्ते मरहम पट्टी कराने उसू टक के रखते हैं क्योंकि गलिया होया अंग खुद नू भी देखने अच्छा नहीं लगता दूसरों भी देखने अच्छा नहीं लगता उसू साफ रखते हैं कि उसके कीड़े मकौड़े न पै जाए और गलिया होया अंग जदों कभी बिल्कुल ना ठीक हो सके फिर उसनों कट देना पड़ता खत्म हो जाता क्योंकि ओ गलिया होया अंग एक पूरे दे पूरे शरीर नू भी गाल सकता है खत्म कर सकता है तो महाराज जी ने इत्थे लफ्ज जो वर्त्या है उस तो ये सिद्ध हुंदा है गुरु साहब साडे जीवन दे प्रति आख रहे हैं इस काया दे प्रति आख रहे हैं इस शरीर दे प्रति आख रहे हैं कि जो तमाम गुण सत नुक्ते जो खूबसूरतियां जो महिमा जो ब्यूटी इस काया दी आप जी ने पिछले कीर्तना च सुनी है सत नुक्ते कि यह दुर्लभ है यह रब का मंदिर है यह रब की कामणी है यह अकाल पुरख वाहिगुरु तक पहुंचने के वास्ते एक घोड़ी है तमाम सारिया जूना दे विचों यह श्रेष्ठ है उत्तम है और अखीर च महाराज जी ने इसनू बहुत ही उच्चा दर्जा दिंदिया होया ए आख्या कि ए एक सरोवर है सरोवर और सरोवर दे विच इशनान कीते सब बीमारियां हट जाया कर दिया हैं सरोवर दे विच कमल फुल हुंदे हैं खिले हुंदे हैं शीतलताई हुंदी गुरु बाबा जी आखदे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु
ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ

सारी ह्यूमन सोसाइटी गली पई। और दसो इसका सर्वाइवल कितने होएगा, किस तरह होएगा? ये शब्द सिर्फ कोई हमें पढ़ देने वास्ते थोड़ो, हम नितनेम कर लिया तो फर्ज पूरा हो गया। इसमें तो बहुत ध्यान दे नाल देखना है, महाराज जी तो बहुत ही खास बहुत ही जरूरी गल कर रहे हैं। जिस तरह किसी कैंसर होया हो, अगर उसमें कोई दस दें कि तेनू कैंसर होया है, लिख के दे दे कि तेनू कैंसर होया है, तो उसमें रोज पढ़ी जाए, रोजाना उसका पाठ कर ले उस लिखे हुए पर्चे का कि मैं कैंसर होया कैंसर होया कैंसर होया, ऐसा कभी हो सकता? एक दफा पता लगन की गल, शक पैन की भी देर है कि इंसान फौरन जाके टेस्ट करवाएगा और फिर उसनों रिमूव करवाएगा, सर्जरी कराएगा। पर गुरु बाबा जी कहते हैं इतना भयानक कैंसर के पूरे दे पूरे गल गए हो अंदरों, और असि फिर उसनों रोज पढ़ देने हैं और बहुत कंफर्टेबली रही जाने हैं। जैसा कि सानू अपने गल जान की कोई तकलीफ ही नहीं होती, असी गले पे हाँ ना, असी अपने आप को दुर्लभ समझते हाँ ना, असी मंदिर बन सके ना, असी सरोवर बन सके ना, असी तमाम सृष्टि दे विच्चों उत्तम ही बन सके, सगों इस तमाम रचना नूं खराब करन दे विच साडी कंट्रीब्यूशन है, इस प्लैनेट नूं डैमेज करन दे विच साडी कंट्रीब्यूशन है, इनवायरमेंट नूं डैमेज करन दे विच साडी कंट्रीब्यूशन है। सो असी उत्तम नहीं बने, पशु पंछी परिंदे कीड़े मकौड़े दे आर नॉट डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, ओनली ह्यूमन बीइंग्स, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस टू द होल एनवायरमेंट। तो उत्तम असी किवें हो? महाराज जी ने यह आख्या, इंसान तेरे नालों सूर चंगा है। कबीर जी ने आख्या साकत ते सूकर भला, साकत इंसान नालों सूकर जो है वो अच्छा है चंगा है, राखे अच्छा गांव, क्योंकि गांव नूं साफ सुथरा रखता है, गांव की सफाई कर दी। साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गांव, पशु नूं चंगा आख्या, पशु मिले चंगियाईयां खड़ खावे अमृत दे, कहते पशु चंगा है घा खांदा है खड़ खांदा है और अमृत वर्गा दुध दिंदा है, नाम विहूणे आदमी रिग जीवन कर्म करे। तो गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द जो कि असी रोज ही पढ़ते हैं, पर इस दे विचों अपनी गली सड़ी तस्वीर नूं असी नहीं देखते, पढ़ के अगान लंघ जाने हैं। गुरु बाबा जी ने इस शब्द यह आख्या है कि ह्यूमन फॉर्म के जितने भी गुण सन, जिस तरह गुलाब का गुण की है कि उस दे विचों सुगंधी आती है, उस दे विचों कोमलता नजर आती है, उस दे विचों रंगीनी नजर आती है, उसका गुण है, हर चीज का कोई ना कोई गुण है, हर चीज का कोई ना कोई गुण है। एक अंबा का दरख्त है, उसका गुण है कि उसनु बेअंत अंब लगते हैं, हर चीज का कोई ना कोई गुण है, और हर चीज जो है अपना जो गुण है उसनु खोई नहीं बैठी कुदरत दे विच। लेकिन इंसान दे जीवन नु महाराज जी देखते हैं, कहते हैं इस दे शरीर दे विचों जेड़े गुण प्रगट होने चाहिए सन, इस दे शरीर दे विच जो गुण हन वो सारे दे सारे कहते गल गए हैं, और जदों ये गलिया पिया है उदों इसनु दुर्लभ ते नहीं आख्या जा सकता।

अगर इसने मंदिर नहीं बनाया तो जदों इस दे विचों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़द्या डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखदे हैं

अगर इस कायां दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए कायां नू बनाउण वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहिंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुक्त तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है। कहिंदे हन

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख नु ए भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे। पर ए आशामा बंदी है बड़िया लंबिया लंबिया, कई बंदे कितनी उन्हों की उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे, हो सो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर वो सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखते हैं ये मूर्ख है क्योंकि इसने अपनी गलत आदतां बना लिया हैं, एडिक्शंस बना लिया हैं, सुभा बना लिया हैं, अते उना चीजा नू वर्तदी है जड़िया चीजा इस नू कमजोर कर दिया हैं। तो कहंदे ए मूर्ख भी है,

अगली गल पंजवनु गुरु बाबा जी आखते हैं अगर एक आया मंदिर ना बनी सरोवर ना बनी तो यह फिर दुखां दा घर है या तो यह रब दा घर है नहीं तो फिर यह दुखां दा घर है क्योंकि इस दे विच इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं जो जो कमजोरी आंदी है बुढ़ेपा आंदा है इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं कि इंसान फिर उन्हां दियां दर्दां दे नाल घुलदा घुलदा इस दुनिया दे विचों जांदा है। सब तो ज्यादा पेन जो है इंसान नूं फिर एक काया दिंदी है, सर्जरी हुंदियां हैं की कुछ हुंदा है। कहिंदे हन ये शरीर ही फिर साडा एनिमी बनता है। बड़ी कमाल की गल महाराज ने बाणी च लिखी है कि यह शरीर ही अगर नाम नहीं जपया फिर साडा एनिमी बनता है, साडा विरोधी बनता है। बाणी च आखते हैं इस तरह, कहते हैं

जे तेरा शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनिया, अगर इसनू असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनू रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया, तो इसने तुहानू दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनू कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानू खुद अपने आप चलना पैना। ये दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच ते बहुत ही चोट वाली गल करदे हन। कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। अते आखदे हन पंक्ति दे विच

सगल शरीर आवत संपकान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वह मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साढ़े उत्ते पहनने दे योग हुंदी है, असी पहन लैने हाँ। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नू उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है। कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसी ना किसी काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी उसकी स्किन भी काम आती, लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जो किसी काम नहीं आता। निफल मानुख, ये मानुख का शरीर जो बिल्कुल निष्फल जाता है, बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का। अगर ओने किया तो कहते निफल मानुख जपे नहीं नाम, ये बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इसके सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति में सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसनु रिफ्लेक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इसके नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजिही, कि मेरी ही जिंदगी अजिही ते नहीं। ए जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसके त्रिकता नहीं है, त्रिकारता नहीं है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐसे तो नहीं पचा बैठा हूं, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नू इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठाव,

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के उसकी पूजा करा, उसकी सेवा करा, मैं भी उसके दर्शन करा, उसके दर्शन करके जिथे मैं मुक्ति नु

वो तेरे कर पुत्र बन के जन्म लेंगे। पहचानेगा किवें, क्योंकि तू भगती नहीं कीती, केवल तप कीता है। पहचानन दा वर नहीं मंगया, पहचानेगा कि

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बाल के त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक एहो जिहा सुपना है, यह ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है, कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी।

मेरे घर प्रगट होया, उठ के खड़े हुए, अपने आप नु कहंदे ने चल मना, तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वाल चल पे, ते की देखते हैं, धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे में दीवा नहीं बलता पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्ता लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषों के नाल भरे है। मंगला चरण के गीत

पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मैं ता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाले ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है।

और माता पिता ये जरूर कहना चाहवांगे कि जब बच्चे छोटे होंगे जिथे उन्होंने चंगा खाना देंगे दे, चंगा कपड़ा देने की कोशिश करते दे हो चंगी तो चंगी विद्या

0: नीच कुलह।
1: कबीर जी जात दे जुलाए सन, हजूर बाणी विच बख्शिश करदे हन के जदों नाम दी कमाई कीती तां गुणा दे खजाने बन गए।

जितनी भी तारीफ जितनी भी उपमा कीती गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी अखी नजारे देखे। एक दिन दा जिक्र है हजूर दीवान दे विच सुशोभित हन हरि कीर्तन विच संगतां गड़ुच होईयां गुरु चरणां विच जुड़ियां अमृत रस कीर्तन सरवन करके अपना जीवन सफल कर रही हैं। एक प्रेमी आया मत्था टेकिया चट बार चला गया। थोड़ी देर बाद फिर सत्संगत दिया दरीजा टप के अंदर आया फिर मुड़ गया। हजूर ने मेवड़े सिख नू भेज के इस प्रेमी नू बुलवाया। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत हजूर पुछन लगे भाई प्रेमिया तू सत संगत विच बहना चाहुंदा सै बैठ नहीं सी रहा इसका की कारण है। ता इस प्रेमी दे नैन कटोरे भर आए हाथ जोड़ के बेनती कीती ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते जिस दरबार विच ऐसे महापुरख गुरु के सिख अजप्पा जाप करन वाले श्वास श्वास सिमरन करन वाले फिर तेरे एक इशारे ते अपना सब कुछ वार देन वाले गुर सिख जुड़े बैठे होन उत्थे मेरे वर्गे पापी नू भी था है। मैं तो बड़ी नीच जाति दा हां। आख्या तू किस जाति दा है गरीब निवाज सानू लोग कलाल कहिंदे हैं। हजूर ने इस प्रेमी नू अपने गल नाल ला के आख्या के जो गुरु नानक दे दरबार विच आ जांदा है ओ कलाल नहीं रहिंदा ओ तां गुरु का लाल बन जांदा है। उच्चारण करो श्री वाहे। जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे तां निर्मल होई। भाई साहब ए नजारा अखी वेख रहे सन ते फिर आपने लिखिया के कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह। ए है हर दी वड्याई हरि दी वड्याई हर की वड्याई देखो संतो हर निमाणिया।

जिथे भी आपने चरण टिकाए वो धरती पूजनीक हो गई, वो धरती वैकुंठ धाम हो गई। उस धरती दी चरण धूड़ी जिसने भी मस्तक ते ला ली, उदा लोक परलोक सौर गया। संसार नूं उतारदे होए धन गुरु नानक पातशाह जदों मणिकरण दी धरती ते पहुंचे, मर्दाने ने बेनती कीती, गरीब नवाज जे आग्या होवे तां कोई अनुपान कर आवां, क्योंकि आप तां पवन आहारी हो पर मैनू तां भुख लगदी है। मर्दानिया तेरी भुख ने तां अनेकां दा उधार कीता है, तैनू भुख लगी तां सज्जन ठग दा उधार होया, तैनू भुख लगी तां कौडे राक्षस दा उधार होया, तैनू भुख लगी तां नूर शाह जो जादूगर लड़की सी उस दा उधार होया। तेरी भुख ने तां पता नहीं कितनियां दा पता कीता है। मर्दानिया जा अनुपान कर आ। मर्दाना जदों इस ग्राम विच गया, ग्राम वालिया ने रस्त दे दिती ते वापस आ गया। महाराज प्रसादा तो नहीं छकिया, पिंड वालिया ने रस्त दिती है ता धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, ओ सामने पत्थर चुक ते वेख निरंकार दे फिर रंग। मर्दाने ने जदों पत्थर चुकिया ता एक गर्म जल दा कुंट निकलिया, आख्या इस अमृत जल विच प्रसादे घड़ के पा दे। मर्दाने ने सत बचन करके जदों पाए ता जितने प्रसादे पाए सारे दे सारे डुब गए। महाराज इतना सारा अन्न इसे तरह, सारी रस्त इसे तरह डुब जावेगी। ता धन गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहण लगे, मर्दानिया पहला प्रसादा परमेश्वर दे नमित कढ़ी दे। परमेश्वर दे नमित कढ़िया है क्योंकि गुरु नानक ने पूरने पाके सानू दसे हन भाई, असी अपनी किरत कमाई नू सफल करन लई पहला प्रसादा गुरु दे नमित कढ़ना है। महापुरख बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन भाई, कोई घाटा पै जांदा है डुब जांदे हन पैसे, या कोई होर मुसीबत पैंदी है, दसवंत कढ़ो चंगे पासे लाओ, गुरु दे नमित कढ़ो ते डुबिया होया माल भी तर आउंदा है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, मर्दानिया परमेश्वर दे नमित कढ़ी दा पहला प्रसादा। जा मर्दाने ने पेड़ा घड़ के प्रसादा बना के परमेश्वर दे नमित सतनाम श्री वाहिगुरु आख के पाया, ता बाकी दे प्रसादे भी पूड़ियां वांगू फुल के ऊपर आ गए। धन गुरु नानक पातशाह जी ने थोड़ा जिहा भोजन अपनी रसना ते रखिया, मर्दाने ने छकिया। इस अजमत दा जदों पिंड वालिया नूं पता लगा तां सारे दे सारे आके सतगुरां दे चरणां विच बैठ गए ते धन गुरु

0: राम राजे।
1: गुरु अंगद देव महाराज हुन गुरु नानक दी महिमा सुनी खिच पई मन दे विच। जिन्हां दे नाल कोई रिश्ता जुड़ना हुंदा भाई, कोई कारण बन जांदा है, अच्छे अच्छे लगन लग जांदे ने, वो चंगे चंगे लगन लग जांदे हन। सो सात संगत, जिस रब दे प्यारे नाल साडा संबंध होएगा, सानू दुनिया सारी दुनिया दे विचों चंगा लगेगा। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: सो सात संगत, हुण गुरु अंगद देव महाराज जी कहंदे हन भाई तुसी इत्थे बैठो, मैं गुरु नानक दे फकीर है, साधु है, मैं दर्शन करे आवां, जरा मत्था टेक आवां, क्योंकि बचपन तो ख्याल तां धार्मिक ने। हुण सात संग गुरु अंतरजामी है, बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: वो जानदा कौन जग्यासु है। धन गुरु नानक, बोलो धन गुरु।
0: धन
1: देख रहे हैं अंदरले नैणा दे नाल के महा जग्यासु आ रहा है, जिसकी परबल कमाई इतनी है, जन्मां जन्मांतरां दी इकट्ठी होई होई। ते सात संगत, गुरु अंगद देव महाराज घोड़ी ते सवार होके जा रहे हैं, अगों गुरु नानक जी इसे तरह ही आ रहे हैं। स्थान तो डेरे तो बाहर आके खलो गए। गुरु अंगद देव महाराज भोले भा पुछते हैं गुरु नानक जी नूं कि इत्थे गुरु नानक का डेरा कित्थे है, गुरु नानक का स्थान कित्थे है। गुरु धन गुरु नानक जी कहंदे हन, पुरशा साडे मगर मगर आ जा, तैन गुरु नानक दे दर्शन हो जाणगे। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: साडे मगर मगर आ जा, तैन गुरु नानक दे दर्शन हो जाणगे। गुरु नानक जी अगे अगे तुरे जाते हैं, तो गुरु अंगद देव जी भाई लैणा जिन्हों का नाम से उस समय घोड़ी ते चढ़े हुए मगर मगर जाते हैं। सतगुरु जी कहंदे हन भी घोड़ा इत्थे बन दिओ जां घोड़ी इत्थे बन दिओ ते अंदर चले जाओ, तुहानूं दर्शन गुरु महाराज दूसरे रास्ते राही गए, पंछना न कीता, आके गुरगद्दी ते विराजमान हो गए। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: होर जितने भी दर्शन अधिकारी सन सारे बैठ गए, भाई लैणा जी भी गए, जदों देखिया ये तो उही स्वरूप है जो मैनू लेके आया है। मन विच बड़ी शर्मिंदगी हो, देखो मैं घोड़ी ते चढ़िया आया हाँ, ते ए किड्डे वड्डे महापुरश ए तुरे आए हैं, इन्हां ने अपना आपा भी जनाया नहीं है। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: संत बाबा अजीत सिंह जी नसल पर वाले ब्रह्म ज्ञानी सन, उन्हां दे दर्शन करन वास्ते एक राजा गया। दर्शन करन वास्ते एक राजा जांदा है, महापुरश की करदे हन, महापुरश हल वाह रहे ने। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: महापुरश हल वाह रहे हन, ते किसे नूं पुछिया, राजा पुछदा वी संत बाबा अजीत सिंह जी का डेरा कित्थे है। उन्होंने कहा ओ सामने चलिया जा, अगे चलिया गया, अगे महापुरश हल वाह रहे हैं, ते राजा महापुरशां नूं पुछता है कि बजुर्गो इत्थे संत बाबा अजीत सिंह जी का डेरा कित्था है, संत बाबा अजीत सिंह जी कित्थे हैं। महापुरश कहन लगे भाई जीता जीता तो मैंने भी कहते होंगे ने, संतां दाता नहीं मैनू पता, जीता जीता तो वैसे मैनू भी लोग कहते होंगे ने। राजा सोचता ला मैं तुहाडी गल थोड़ा ही करता हाँ, भाई जीता जीता तो मैनू भी कहते होंगे ने, तो महापुरशां का किसी होर नूं पुछ ला। सो सात संगत किसी होर नूं पुछदा भाई महापुरशां दे दर्शन करन, कहिंदे महापुरशां कोल तां खड़ा गल्लां करदा सी, कहिंदे कहिड़े महापुरश, कहिंदे हाल तां बाहर रहे ने, कहिंदे ओह महापुरश ने, कहिंदे तां मैनूं इंज कहिंदे सी। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: क्योंकि बाणी दस्सदी है

0: जिन हर पाया तिना छपाया, छिपे रहन की चाहत छिप टुर जान दी, पर यह पूरी हुंदी ना मैं तरले लै रहा। सात संगत खुशबू फुल दा पता दे दिंदी है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: खुशबू किस फुल किसी नूं नहीं कहिंदा है, ना फुल किसी नूं दसन जांदा है, ना फुल किसी नूं सददा है। फुल दी खुशबू ते सात संगत राही नूं सात संगत खुशबू तो उसका पता लगता है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हुण जी खुदाए दा भेद ना किसा दे, हुण मन दे विच बड़ी शर्मिंदगी आई भाई लैण दे कि मैं घोड़ी ते चढ़िया आया ते गुरु जी ने अपना आपा तक नहीं जनाया, ये तुरे आए, ये तो कितनी बेअदबी है। अंतरजमी सतगुरु जी कहिंदे हन भाई पुरशा, बेनती भी करदे हन महाराज मैथों किड्डी बेअदबी होई, मैथों किड्डी बेअदबी होई, तेरा नां की है जी लैणा। गुरु जी कहिंदे कोई नहीं, लैण वाले घोड़ियां ते चढ़ के आया करदे। रमज दत्ती लैण वाले वो राज नहीं देंदे, रमज देंदे ने। लैण वाले घोड़े ते चढ़ के आया करदे ने, इस करके तू मन दे विच कोई चिंता ना कर, त्याग दे मन दे फुरने नूं। फिर सात संगत हुण दर्शन करके ऐसा मन जिवें मच्छी पानी दे विच लीन हो जाती है, गुरु दे दर्शनां दे विच ही लीन हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूजे पासे लभदे लभदे साथी आए, बई जाना है इत्थे ही बैठ गए। कहिंदे हां बस जिथे जाना सी चले गए, जिथे पहुंचना सी पहुंच गए, बोलो।